मणि चेन भी हो इमा मणिपुर कुंभी कालेन खाई देना लेरांग कयान लेशातम लिबी येंग बगी पेन बनाई देबी पोकन फम लमदम इमा मणिपुर नतिक नंगाल न हेलिबी हे पोकन फम लमदम

राधा नाम ना पुंसी चेंगजेलनी लानगनी ईपा कृष्ण नाम ना हे जगत की मबुओ श्री कृष्ण चांदबी को ननाई शिंबू।

मक्खन में तिलकी थरम क्या संदूक तो ने तहंजरी बासी आकाशवाणी फालगी एफएम संगाई चैनल दिगिनी हौजी पुंफो मसीदा पुदुने लाक्चेरी सीधे ही दाग गसी की सीधे ही दाग ता खंगमी नशी खौरांग बा कोक नब योग युबी महीदा फदिगोम अमशुंग फोंगमान भी मरु तिंगलगा महीदु थकलबदी आराम खौरांग बा कोई इशिंग अयिंगबदा फोंगमान भी तिंगलगा महीदु थकलबदी खौरांग बा पोथाहली कंफोय मरु जीरा अमशुंग नागेश्वर मकुप चीनी अंगोबा अमशुंग खोही गलोइनना चारबदी खौरांग बा फई नुक्षित ना हेन बगी खौरांग बदा चीनी अंगांग बा अमशुंग संगोम अफंबगा लोइनना चारबदी खौरांग बा फई फदिगोम अफुटबा महीदा चीनी अंगोबा हापलगा थकलबदी खौरांग बा अमदि हकचांग सागतब फई निमिदांगदा कबो अखिंगबा इशिंग द तिंगलगा आयुक्त महीयदु लौरगा वांग मही खोही चीनी अंगांगबा अमशुंग चीनी अंगोबा हापलगा अमत ओइना तीनरग चारबदि खौरांग बलेना पुमनमक कोई एखोइना एखोइगी पुनसीदा अफव चिनजा अमदि नोमगी हकचांग साजेल तौदुना वकल हकचांग इंगना नुंगाइना फना थमिनेसी हैबो बफमसी थमजिरी

मकल मथल की थरुम क्या संदोक तुने तहन जरीबा सी आकाशवाणी इम्फाल की मैं गहर शाम अहुम दसमीक मंगान संदोक चरीबा एफ एम संगाई चैनल दिगनी हौजी पुम्फम सिदा लांथोक चरी पी थादोई थरुम सी स्कूल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इबोटोम्बी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मीमा की तेंगमांगलना संदोक चब थौरमनी

ताविरे खुनराकपम जीवन की खोंजलदा थिंगबाईजम स्वरण कुमारना सैरेंगबा मतमिशे मखल मथल की थोरम क्या संदोक्तुने तहन जरीबा सी आकाशवाणी फालगी एफएम संगाई चैनल देगनी हौजी पुम्फम सिदा छंदोक चरी नहारोलगी खोंजल

0: मक्कल में तेलगी थरुंग क्या संदोक तो ने तहन जरी बाशी आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल दिखनी हाउजिक मणिपुरी दा मरुए बपाव ताबिरसी
1: आकाशवाणी इंफाल हाउजिक पाव की मरुए बपाव दा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जी राम जी एक लिसंगनी कुनमंगा भारत की खुंगंग सिंगदंगा सिदेगी चनबा हौरे हाँ चलना एम जी नरेगा की महुत सिंगदब एक सेंबा सही खुदिंग चाम कुनमंगा पीदुना भारत की खुंगंग सिंगदा अहेंब शक्ति पीरगनी लोकसभा की एम पी अंगोमचा बिमोल अकोयजम सभापति ओइदुना इम्फाल वेस्ट जिला की ओइना चलिब सेंबा सही असिगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग दिशा कमिटी की अहम मिफम इम्फाल की लंपेल पात डीसी ऑफिस की कन्फ्रेंस हॉल पांथोख्रे केंद्र की लौ सिंगु मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अवांग नोपोक लमदम की खोंचत हौख्रे मांगना गुवाहाटी आसाम मसीगे थंगनब राइज सिंह मायोकनरीबा इचाउ की फिवम की मतांगदा वा खनखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगरंग न्यू दिल्ली की सेवा तीर्थद तोान तोानब मंत्रालय सेक्रेटरी वरी सानख्रे वरी सानबदुदा ललो लिटिक तौबद हेन लाइथोखंदुन नुंगाइने हिंगन्नब आत्मनिर्भर भारत की माइकैद अहेंब मियंग चंगनब की मतांगद खनखी केंद्र की जल शक्ति मंत्री सी आर पटेल ने हायरी मियोय कोटि क्या की इमुंद तोटी इसिंग फांगंदुना जल जीवन मिशन ना खुंगंग की मियाम की पुंसी चाउन अवनब पोरप गमले नुमित हुमनी की भारत खोंचत्ता जापान की प्रधानमंत्री सनाये तकाइशी नुमिदांग वायरम न्यू दिल्ली थुंगलरगनी मांगना हयेंग भारत अमसुंग जापान की चही की ओइबा मिफमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलोइना नशरुक यागनी अमसुंग फीफा वर्ल्ड कप की राउंड ऑफ 32 की गरंग नुमिदांग पुंग तरा मखाइते सानकी बम मेस्ता नॉर्वेना आइवरी कोस्ट पांजेल अनी अमद थोइख्रे हौखिबा हिंग नोयाई मतुंग पुंग अनी मखाइते सानकीबा मेस्तना फ्रांस न स्वीडन बु पांजिन अहुम सिनोद थोइखी हौजिक मेक्सिको गा इक्वेडोर गा सानरी नया की ममांग पाबुदा मेक्सिको ना पांजिल अनी सिनोद मांगजिल थारी पाउलो जरे
0: ताबिरी बशी आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल दिगिनी

मथुर मथिल की थोड़म क्या संदोक तो नहन जरीबा सी मेघर चाम हम दसमिक मंगा दंदोक चरीबा आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल दगिनी होजिक पुंफा मसीदा पुदन लाक्चरी फल ममगी सईदा लामई फोंगी सई सिंह मथंग मथंग होना

那么大比利巴是风妈妈给谁的那是一风拉美拉美风给东岸东岸吧一些新的是大的个风妈妈的萨克姆朗基吧 actor actress 宁心哈利新年给萨克姆的デニー・リッマーバムナ、サクタム・ランキバ、タンバーギ・サクタムダ、プレミシュリナ、サクタム・ランキバ、タンバーギ、マパブンギ・サクタムダ、イボヤマ・コマナ、サクタム・ランキバ、マディ・ライシュム、ラリタ・ヴィナ、チングレンギ、ママギ・サクタム・ランキバ、ロキ・マサマグナ、ロキ・サクタム・ランキバ、カルパナナ、ライシナ・ウィナ、チングレンギ、ウキル・ロイヤギ・サクタム・ランキバ、プレミシュル、ウィナムナ、ロキギ、उकिल के सक्तम लांकीबा बेबी मुतुम यफविना बेबी थंबाल के सक्तम लांकीबा अमदी अतोपा सक्तम लांकीबा सिंह आकाश उषा विद्यापति तोंबी अमदी जितेन हिनिंग सिंह हली फमसी देगी मथंग द मुक्ता मिनशी पुष्परानी की नाइतम खंजल द राजेंद्र ओक्रमना शैरेंगबा अमदी ओकेन अमाकचमना शैरांग बिशेनी खुदल तमजरी नोयने तामिनसी

0: expert on election bigadaba langpo lakpam dhanesor deputy director social welfare department thorum lanthokpi gidabi ekpam priyobala thorum puthokpi thokchom renubala soidanamaki sarukabiu thorum tabiu akashwani imphal haujik numijungba pung tarani thoi tare manipuri da numijungba gi pau tavirsi
1: आकाशवाणी इम्फाल मराठी बिना पाव पाजरी अहमद मरुई पाव डॉक्टर सिंह की निमित्त मरी लेना मुख्यमंत्री युवना खेमजा अना लायंग डॉक्टर सिंह ने लौरीब इकाई खुन उत्ली विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वी बी जी रामजी एक लिंग अनीमा भारत की खुगंग चलगनी भारत खोचत जपान की प्रधानमंत्री सनाये तकाशी ंगरमनी दिल्ली थूलगनी फिफा वर्ल्ड कप की राउंड ऑफ 32 की अयुब सानी मैच मेक्सिको इक्वाडोर पांजल अनीद थोखे नेशनल डॉक्टर्स डे लाप्द मुख्यमंत्री युवना खेमचा यफ पाजल पीरली सोशल मीडिया थगल वारोल श्री खेमचा है सकनाब फिजिशियान स्टेटमें डॉक्टर विधान चंद्र रोय की बर्थ डेट एनीवर्सरी मेडिकल की लम्द मामब इकाई खुन उत्ब पांथोली नेशनल डॉक्टर्स डे लाप्द डॉक्टर मामगीदम काथोपना पांथोली थोदू इकाई खुन उत्ली मुख्यमंत्री नेशनल जीएसटी डे नेशनल पोस्टल वर्कर डे मरी लेनेनासु यफ पाजल पीरली अमरमद मुख्यमंत्री युवना खेमचा इंडियन वुमेन्स लीग सरुक यागदब यूथ वेलफेयर क्लब वुमेन्स फुटबॉल टीम उनखरे मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीट उनब एमएलए शेख नूरुल हासन सरुक याखे राज्य से फिवम अगला सेक्यूरीटी अकनब सेक्शन थोरंग नेशनल हाईवे कुंथा तरत नोम चंगदब याद्रब पोलम पुब गारी चाम यांखनी जिरीबाम इम्फाल तमनाखे अखोग जिरीबाम पाने पुलिस के पाव पलदना नेशनल हाईवे पादब ड्राइवर असोई अगाम थोतनब सेक्यूरीटी की कनबोई गारी सेंदना इम्फाल तमनाबी गारी एल पी जी पुब गारी निफुनी डीजल की कुंतरेट पेट्रोल की कुनी सिमेंट की तरामा हिदा लांत पुब गारी अहम यावरी जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकादमी जगह इसल है पांथोकनीम एम एल ए थोंगा विश्वजीत सिंह आर्ट एंड कल्चर की जॉइंट डायरेक्टर मोना माइरेम्बम मणिपुर स्टेट कला एकादमी की सेक्रेटरी सुनंदा थोचों सरुक यागनी पेना सैसपी दोना गैरांगबम लाइखोराम मोनिका देवी जगह इस उत्कनी इम्फाल वेस्ट जिला की लंफेलपात कमांडें होम गार्ड की ऑफिस कम्प्लेक्स कौनबीरब इमा खांजें लाइमी की चाही की थोम पांथोखे होम गार्ड की डिपुटी कमांडें विद्यापती तिमाइजम लुचिंदना इमा की मफम हईकटना ऑर्गनाइजेशन की याफनब थे थोम मणिपुर होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सीओ ए सी पर्सनल कयासु सरुक याखे मेट डिपार्टमेंट है मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय ने चिंब मफम खरदी अकनब नौचूरब ये अमरमद लाब निनी दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब खा नौचुक्त लाप कों नौचूरब ये है नों मध्य प्रदेश की मफम खर छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार की मफम खर उत्तर प्रदेश की मफम खर हिमाचल प्रदेश लद्दाख उत्तराखंड चूरब ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वी बी जी रामजी एक लिंगा भारत की खुगंग चलगनी रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय है सेंबाही नुमित चाम कुनमंगानी थबक पीनब की एक असिना भारत की खुगंग अहेंब शक्ति पीरगनी आकाशवाणी पाउमीन है लैबाक सेंब थुंग अनौब अनौब फ्रेमवर्क चलनाबीदम सेंबाही लुपा कोटी लिंग मरपुद्रमा चातुक मरपुदानी खातुन थमले बी बी जी रामजी एक चाही कुन सूरब हाने की महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी एक एम जी नरेगा लिंग अंगा की महुत छिलगनी इंग लिंग अफुतरे फाबद विकसित भारत ओहेनब की मेंखाद एक सेंबनी रूरल डेवलपमेंट मंत्री शिवराज सिंह चौहान है Tabak Toba Yarba Mui Amata Tabak Suba Pangdana Lairoi Dabani Raja Singh Amadi Union Territory Singa Puna Tabak Dominaraba Matung Anova Premwak Ase Matau Tongnaba Sangadaba Senpam Singh Kaitoktuna Tamle Mang Hai Namit Sama Kun Mangani Sugadaba Tabak Asina Kungangi Mui Singi Hingnaba Gilambi Pibaga Loinana Senmit Ondasa Sauna Mateng Oiragani Sarkari Asiguma Thorang Asina Pradhan Mantri Gi Bikshit Bharat Ki Manglan Mangpang Nan Bada Asoba Mateng Oiragani Kendra gila usin menteri Shivraj Singh Chauhan ye nimit nini awang nong pok raja singi kongset haukre mahak na ngarang ko hati da Assam amasung thangna ba raja singh da mayok na riba isaw gi phimang gi matang da wa khanake isaw da na sol la ba longmi singa una da na wari watai sakhi raja dugi menteri singa wari sana da na isaw aduna amang ata thon khra ba infrastructure amadi la usingo gi polam singh matang da matik sa ba kheti puron pigani haina Shri Chauhan tha ja ba pi ki tabi riba pawa se akas bani Imphal da gi ni Namit hom nigi Bharat khongchatta Japan gi Pradhan Mantri Sanae Takaisi ngasi numidangwaram New Delhi da thunglaragani mang hayang Bharat amasung Japan gi sahi mipamda Pradhan Mantri Narendra Modi loinana saruk yagani kendrai mapan thoram mantralein hai mipam asina lebak nigi marakta hena tengbang pinaba hengatna bagi kudong saba ama piragani Rastrapati Draupadi Murmu na Central University of Andhra Pradesh ki ahanba convocation da ngasi saruk yagani Anantapuram Jilagi Jantuluru da leba University asida undergraduate amasung postgraduate loiraba mahiroi lising ama jani humphuni panda degree pigani haithoi singthoiraba University asigi mahiroi yangkai tarukta Rastrapati na gold medal su pigani Oil marketing company singna kilogram tarama palgi commercial LPG cylinder singi mamal ngasi degi lupa Sama, marpum doi makai hantana wari blokre Indian Oil Corporation Limited hai commercial LPG gi mamal hantana miyam da phangana bagi tabak ngasi dagi hauragani LPG cylinder gi mamal hantaki ba asina maram oiraga Bharat ki konung Delhi da hauji kilogram tarama palgi commercial LPG cylinder amagi mamal ase lupali singama samapan kuntra oire Orang asina sana thangna ba yoliba restaurant daba hotel amadi atai sana ba yoliba dukan singda kudong saba piragani Rajasthan ge dok chajila da sleeper bus amatra ka thengjin na ba gi thodok amada miyoi tare chire tarani thoi aso apan nangle thodok adu ngasi ayuk angan ba pung humlom ta ba matam da thoki bani bus adu Rishikesh dagi Indore tamna lak pa gi lambi da truck adu da thomjin badagi khudak ta mai jalak pa dagi miwe tare adu mapham adu makta da sikhi bani thaudok adu gi pau he phangba ga mapham adu da police ki kangbu am lak ta nei yengchen ki hauri lekhi da ba miwe sing adu ma sa khangdok na ba thabak paikhat pa hau khre kendra gi jal shakti mantri Siat Patil hairi miwe koti kaya gi imung da toti ising phangandana jal jivan mission na khongang gi miang gi punchi da chaun awon ba purak le department of drinking water and Sanitation Innovation Challenge ki New Delhi da pangtoki ba grand finale da mantri na hai Jal Jeevan Mission gi mathang gi tangkak tadi miyam da laina tin la cheloi da ba aphaba thakna bi sing phanganna ba gi maike da miyang changani mahak na start up sing amasung innovator sing da Bharat ki khungang gi lam da mayok nari ba khudong cha da ba kaya asi thengna na ba thabak paikhatna ba chu hai ke FIFA World Cup ki round of 32 gi haujik nyaha ki mamang da san ki mes amada Mexico na Ecuador ro panjal ani sino da thoi kre ngarang mi dang pung tara ma khaida san ki ba mes ta Norena Ivory Coast po panjal ani amada thoi ki hoki ba ing nong yai ma tung pung ani ma khaida san ki ba mes ta na France na Sweden bu panjal om sino da thoi ki ngasi nu mi dang pung ma pan ma khaida England ga DR Congo ga san ga ni nong yai ma tung pung ama ma khaida Belgium ga Senegal ga amasung hayang ayupung manga makhai dana USA ga Bosnia ga sanagani Kendagi skill development amasung entrepreneurs ki rise mentri Jen Chowdhury na ngarang leba kasi gi flagship skill competition industrial competition lising ani kuntaru kuntare haudokre udo kamari le na skill category humphum doi gi haitoi sing thore bana singu masak khangdok na ba amasung makhoi bo jokhat na bagi pandam da competition achi pangthok pani aroi bada maroi ba pau amo Dr. Singh Namit ka mari lena na mukhya mantri Yumnam Khemsana ana layang da Dr. Singh na lawri ba thaudang kya wi kai kunna ba uti Bechit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin BBG Ramji Ekli Singh ani kun manga Bharat ki khungang sing da ngasi da ki chatna ba hauragani Namit hum ni ye Bharat khongchatta Japan ki Pradhan Mantri Sanae Takaisi ngasi ni midang wadam ni deli de thongna ra gani amazon fifa world cup ki round of 32 gi ngasi ayuk chana ki ba mes amada mexico na ecuador ro panjal ani sinoda thoikre paulo jare
0: Sunduk ceri bersih akas wanim fagi FM sangai channel degi ni. Traffic control police wing Manipur gi mai kai degi. Bibi rakpa traffic update. Mayang gi mafam dah thamjari. Imphal iski wena di mafam kodi makta normal wena ceri hai na thambirai. Imphal west ki wena di nitiay part chutheki wena. Post office room degi lakpa amadi western gate kangla room degi lakpa gari sing. Mayang wera chilli. Western gate kangla gi wena nitiay part chuthek. Lumdegi lakpa gari sing mayai oirap chili haina thambirei LIC crossing gi oina su western gate kangla rumdegi lakpa gari sing mayai oirap oina chili kaisampa junction gi oina wahengbom lekai rumdegi lakpa gari sing mayai oirap oina chili atopa mapham panjadriba junction sing gi oina di normal oina chenari haina thambirei matang sida traffic update people loi chare
2: HIV 가 사고는 행리바 미워 신부 한탄의 영바 아무디 따티 다워이나 더 위로이다 보니 까리군바 하이리바 더웅신가시 사타람라바디 HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017 기마카다 제락 초이드는 펑거니 HIV 포지티브 어르바 미워 신부 나트라가 HIV는 소홀라바 미워 신다 따티 다워이나 더바 마코이기 마랄마톰 프로퍼티 문나보 헛나라바디 엠버스멘트 컴플레인 더워 야이 Complaint form ART Center sing da loina phangbigani online complaint tawbige haragana Manipur State AIDS Control Society gi website te sanglaga complaint tawbi HIV AIDS ki maramda hena kupna khangna bagi damak AIDS toll free number 1097 call tawbi amuka haijege AIDS toll free number 1097
0: Akaswan Imphal haujikta virasi aikhoi gi wakat Live phone-in program. Thamjari vahiram akhannana sinpang liba haivadi differently evaluable muisingi phangbayaba kudong savasin. Lingshin biriva expert Langpok Lakpam Dhaneswar, Deputy Director Social Welfare Department. Thaurum lantokpi gadavi ayakpam priyobala. Thaurum puthokpi thokchom renubala. Tavirasei.

शुक्रिया दोस्त अजित। सभी रेडियो साथियों को मेरा नमस्कार और ये है आपका आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का मनोरंजक चैनल संगाई चैनल और मैं हूँ आप सबकी रेडियो दोस्त वैलेंटिना गीतमाला के गीतों के झनकार भरे इस सफर में।

दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं आज? आज बुधवार है इसलिए सोचिएगा मत और फटाफट से आपका पसंदीदा गीत आप डालते रहिएगा और हम आपको सुनाते रहेंगे और सभी रेडियो सुनने वालों को आपके पसंद को हम और सभी दोस्त जान पाएंगे। इसलिए ये पहला गीत है जो हम सुनाने जा रहे हैं अपने दोस्त हैंगांग मयाई लेकाई से, वाकम बम जॉन, बिजोईसना, अनीता, डेनिस और सोनिया के पसंद का गीत है। बहुत ही पुराना और सदाबहार गीत है, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आप आए तो बहार आई। आप आई बहार आई है फिल्म का नाम है। आनंद बख्शी के लेखन में ये गीत है जिस पर अपने संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और दोस्तों अभी अभी जो मेरे हाथ है एक पीला सा पोस्ट कार्ड और उस पर लिखा हुआ है प्यारे प्यारे अपने हैंड राइटिंग में हिंदी में लिखा हुआ है शुक्रिया हिंदी में लिखने के लिए। साजन फिल्म से ये गीत है जो उन्होंने पसंद किया है अनुराधा पौडवाल की गायन में और गीत का नाम है मशहूर गीत है दोस्तों बहुत प्यार करते हैं और इसको सुनने वाले सुनना चाहते हैं उन दोस्तों का नाम है तोपमया इलेकाई से तिलोत्तमा अथोपम और उनके साथ बहुत सारे दोस्तों के नाम हैं नोंगचुप संजेनबम से रोनान हेंथोइबा तमा निकामनी नबा और जो थोड़े बहुत दोस्त हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं और चिरांग से धमेन ज्ञान उनकी हैंड राइटिंग मैं नहीं पहचान रही हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा थोइबी तोम्बी और रानी पला

और धीरे धीरे करके अब गीतमाला निखर रही है अपने सुंदर सजीले अनोखे गीतों के साथ। और ये अगला अनोखा गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की गायन में फिल्म सरगम से। आनंद बख्शी की रचना और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा और पसंद करने वाले हमारे दोस्त के नाम हैं W. नंदो, सुशीला, सदानंदा, दिव्या, लक्ष्मी। पार्ट सोई पार्ट टू से यामबुंग इनाउचा, जनमेंजोई थियाम, थियाम लेसांगखोंग से थियाम राम, कवा नौरम लेकाई से महेंद्र वांगखिमचा, नम्बोल फोइजिंग से इपो चौबा।

क्या मैं जान सकती हूँ कि हमारे श्रोता खुश हैं? अगर आप खुश हैं तो हम भी आपके लिए खुश हैं। और ऐसे गीत सुनने के बाद बस मन मगन हो जाता है। और ये अगला गीत है शत्रुघ्न सिन्हा और जया प्रदा की, उन दोनों पर ही ये गीत फिल्माया गया है, फिल्म कानून की आवाज़। बहुत ही प्यारा आवाज़ होगा इस गीत में। इंडिवर की लेखन और जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत है, साजन मेरे साजन। एक कमाल का गीत है उस समय का, याद कीजिए और सुनिए। और ये पसंद करने वाले हमारे दोस्त के नाम है राइजिंग सन ड्रेसेस से, कुछ नाम है, लंबा चौड़ा नाम है उनका। पहले ये गीत सुनिए फिर नाम।

0: शिमर।
1: और दोस्तों, इस गीत को पसंद करने वाले हमारे दोस्तों के नाम थे राइजिंग सन ड्रेसेस, थांगमईबन थाओ कॉम्प्लेक्स से थियाम राजेंद्र लुवांग, नोंगानबी वोनिका कंगलेचा लुवांग, चिंगमेरोंग ममांग लेकाई से आर के सुनील, आर के किरणबला, आर के वीनस, रीता आरामबम, इबेम नुंगशी चिंगांगबम, अरीबम इबेम नुंगशी चिंगांगबम, अरीबम उपेंद्रो शर्मा। और अगला जो गीत है उसके लिए फरमाइश आई है हमारे दोस्त आर के एन जी रणबीर, और उनके साथ हैं आर के तंभासना जो है वांगखई और पुरमपाद चुथेक से, और सुनना चाहते हैं मेरे सनम फिल्म से मोहम्मद रफ़ी के गायन में ये गीत, मजरू के लेखन में और ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में।

दिल के करार को तार तार करने वाला ये गीत है और इस गीत के गायक हैं सोनू निगम और श्रद्धा पंडित। और श्रद्धा पंडित की आवाज़ों में ये गीत है, समीर की लेख, जतिन ललित के संगीत और फिल्म का नाम है संघर्ष। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे दोस्त समरेंद्र हिक्रुजम खुंगजोम सापम से और सुनना चाहते हैं अपने सब दोस्तों के साथ।

और दोस्तों, आज का ये आपकी फरमाइश भरपूर गीतों के झनकार के साथ था। नोट कीजिएगा हमारा नंबर 9863239365 और मेल कीजिएगा इम्फाल गीतमाला@gmail.com पर। सुनते रहिएगा गीतमाला। नमस्कार।

मखल मथेल की थोरम क्या संदुक्तु ने तहन जरी वैसे आकर्षपानी फागी एफएम संगाई चैनल देगी हाउजी उमुक लांठोक चरी मटमी सेसिंग

0: खलमचलगीथोरम कया संदोकतुन ताहनजरीबसी आकाशवाणी फागी एफएम संगाई चनेलेगिनी हौजित लानथोकचरी वारी सासी इसैतासे मसीगी थोरमसिदा स्टूडियो दा लिंगशिन बिरिबा एकोगी गेस लमदमसिगी सगनायरबी एक्ट्रेस अमनी तोंगान तोंगानबा फिल्म कयादा मियामने यामना पामनखिबी नसी फाउबा मणिपुरी फिल्म इंडस्ट्री की आइकोनोइन लेरीबी साइखोम मंदा लेमने मंदाबू आकाशवाणी इम्फाल की स्टूडियो दा तरामलोकसरी
1: ऑल इंडिया रेडियो बुता बिरिबा ख्वाइ खिबिक पो खुरुमजरी
0: मंदारंग सिगी थोरम सिगी मतांगदा खोइन कितंग हाइजब तारगदि एखैगि थोरम सि युमजेकेशन मित संतोख सब प्रोग्राम आ मखकमि मसिगि थोरम सिगि ओइनदि एखैगि सि वारि सामिन बगल ओइनना अखैगि इसै तानिंग बा हाइब तारे गो मयाम म ताबनि अदुग मरक्सिदा खैगि लिसनर नुसि जरब सिंगना कॉल तो बिरा कांदा खै लिंगसिन बिरिब गेस्ट गि खंगनिंग बवा फम कया मासु लैबसे दुम खंगबगि खुदुंग चाब लैबनि अदुबो लाइबक थिबदि नसिगि ओइनदि लिसनर सिंगी फोन से लोकचर अदुबु ताबिरिबा कोई लिसनर सिंगना कोई स्टूडियो की थमजरीबा टेलीफोन नंबर 9863102016 नंबर से एस एम एस तौबीरक्तुना गेस्ट की खंगबीनिंबा हंगनिंबा वाहंग सिंग हंगबीरक्नब निंसिंग जगे कोई थमजरीबा टेलीफोन नंबर उंतंग निंसिंग जगे 9863102016 असिदा टेक्स्ट मेसेज तौर निरी थोरम सिगी लिंगीरली गेस्ट अमुक हन तराम लोचरी अखा ताब अखी सिंह सूम सानद्रिंगाइ तारे सोम मसक ताक्सब सोम कुंखीब तारेको फिल्म इसई खतंगे करम फिल्म की इसनो निबी कुरबनीना फिल्म ममिंग से कौगी खोटीब लेब सूम खंगनजगे सही लानथोक्चरी

0: ताविरे वारी सासी इसाइतासी थोरुमसिदा लंदम से की सकनाई रवि फिल्म एक्ट्रेस साइकों मंदा लई मगा उन्हें दुनो वारी सावा तहन जखरे थोरुमसिदा मेसेस ताविरे तुने सरुग जावी रखे बामडी थोरुम ताविके व पुनमकपु थागर पफोंग रुपचरे आकस्मान इम्फाल हौजिक नुंचे गिपुंग मंगा तारे मणिपुरी दा मरुएव पाव ताविरे से
1: आकाशवाणी पाल हो जो पाव की मरु इबा पाव मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का मरी लेने ना मुख्यमंत्री युमनांग खेमचाना सभापति ओइदन महाकि सेक्रेटरी मिफम मा पांग थोकरे हर घर जल थौसिल की मखादा प्रोजेक्ट असिन थपन बे इसिंग मरांग काइना युमथोंग खुदिंग फंगन न बगी मतांग दखनखि राइजा सिते लेरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना राज्यपाल अजय कुमार बनाद ngasi मेमोरेंडम अम पिसिन करे मेमोरेंडम अददा राइजा सिगी ओइना मि कोथि बगी थबो हौदिङै दे एनआरसी अपडेट तौबा राइजा सिगी मरु ओइबा हाईवे सिंगना थामलिबा आथिं मसें खदक तहंदोपा मणिपुर गि डेमोग्राफी दे होंगलबलिबा असिगी मतांग दा थिजिनदा मेंबर अमा खनबा आईटीपी सिंग मसा मसा गि मेयम दा हंजलन मना चिंगबा दाबी सिंग याउरी सयोलम सुपने साथा कदब बन महोत्सव बिसिंग अनि कुंतरु ngasi राइजा सिगी तोंगान तोंगान ब मफम सिंग दा हौदोखरे थावाल तमेंगलोंग सेनापति मसुंग सादेल दा महोत्सव असि हौदोखे कोंथौ जम दा लैबा वेस्टर्न कॉलेज दा जु उजारा थादना थारम असि हौदोखे केंद्र की सेल्थ मंत्री निर्मला सीतारामन निमित मरीन ही खोंचत फ्रांस की दमक ngasi भारत थादोखरे मा के खोंचत असिदा भारत नमसुंग फ्रांस का लेनरी बमरी हेन फगलनबा सेल्थुंगी पिमम यावना इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी अमसुंग इनोवेशन नि मतांग दसो वाफम खनागनी पासपोर्ट अमेंडमेंट रोलिसिंग अनि कुंतरु की मखादा हंदक तनावना पासपोर्ट छेमदा चंगदा बसेनफम हेंगत की बदो ngasi दगी चनब हौरे अनोबा चना कांगलोन असिगी मतुंग इना हान लेरम पासपोर्ट नौना छेमदो पर नटगा अनोबा पासपोर्ट छाबदा लुपालिसिंग अनि चंगादगी हौरगा लुपालिसिंग ओम चंगा पावा लौरगनी उत्तर प्रदेश तलंदी की खुदोंग थिबा थौदोक अमदन पी मसानी यावना मिय मंगा सिरे जाम कुंत्रा मंगा सुबा एडिशन ऑफ दुरान कप सही असी की ओइना राइज मंगा कोलकाता गुवाहाटी शिलोंग इम्फाल अमसुंग रांची द पांगथोक लगनी टूर्नामेंट असी द पुन्न टीम कुन मरीना सरुक यागनी पाउ लइजरे
0: आकाशवान इम्फाल हौजिक संगाई चैनल की मखाता ब थोरम लांथोक पिनबा प्रिसिला द सिनजरी
2: थागचरी अजित कोनसंबा मखल मथिल की थौरम सिंगना लेटिंग उइदना संदुक चरीबा अदुंगी दमकनी आकाशवाणी इम्फागी एफएम संगाई चैनल हौजिक पुंगफम सिदा लांथोक चरी यूथ टाइम्स ngaiko takishi

0: त मुचो
1: तो बे
0: नंग ना हल मखे कदाई दे लई रु बगे हायो त मुचो नंग ना हल मखे कदाई दे लई रु बगे
1: तो बे
0: इमा की मनी थोई बा इसा की वा खल द चाब मचे तुम मचे खंग द ना वांग लब जेल की सेक पल नुंग द इमा न कया द वा न खांग की बा इसाबुनान मखई कदाई दे लई रु बगे बुमो नगुनान मखई कदाई दे लई रु बगे बुमो
2: इमा हवारी पुंबा इतम से इमा आई आई गाड़ी ड्राइवर ने इमु मनुंगी नुंगाई तब थोंदो दगे मनि थोई जाई ग थेंगले बदगे आ गुवाहाटी दा फुक्सेन जारो बा पाबुंग मगी मनाकता आइ खोइ ngasi सु दुमक नुआइन पुन लई मिनरीये अदुगा इमा ग इसन ग ngasi जेन दगी लथोक लिबिसि सु फुक्सेन जारो बा पाबुंग दुन मतेंग पंग वि दगिने इमा पाबुंग सु योरी ए आइ एम तो कोक थोक सेरुगी के हे मनि थोई आइ पाबुंग कोक थोके इमा एम तो कोक थोक सेरुगी के इमा लई बिदम
1: तुमबे
0: आइ खोइ बुजिल लगी लथोक बियाय बा इबुंग
1: मा
0: पाबुंग हाई सिबु कना नोने
1: मा पाबुंग हाई दो तू आदले है तू पाबुंग आले है मा
3: आई आई मा
1: पाबु तू आई की सन पियाबे दो सिले रे पाबुंग तू सिना आई की इमा

0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: गुड इवनिंग मणिपुर की थौरमनी तारामन उच्चरी कनाव बीरबनो।
1: हेलो आई तो राम देखी
0: हाय बियो
1: कौन सा जन थाई बे मा
0: थाई बे मा बु तारामन उच्चरी करी से ताबी गनी थाई बे मा फिल्म से खन बियो
1: तो आ अगर मैं पूरी बोलियां ना चाहता अभी ताजे नहीं है ना हाई के तो
0: Awai ba mapugi bonyam na sakpa romi maitei na sairing ba sorry senjam na sairang ba wakalgi asum na sewi se ise ise oi ni ko taibe ma
1: mami
0: adu matik amang ang thopi ga dro
1: jai ingang wo ni to ya ha ya to ta gira
0: o pare pare du di ise ise सही सक पता क्यों नहीं था मैंने रसे थोड़ा मस्त रुक गया बिरख पाया था क्या चली का
1: ओ मेरा

0: हेलो,
1: गुड इवनिंग। अदम उतराम उच्चरी मिंग ले फ्रॉम हाइबियो। ओमिता तराम उच्चरी थोरम दा कोई थोरम सिंह अदम अक्ताबी रिको ओमिता।
2: ताज़री ये नहीं दामाद जी सुमले अपने थोड़ा चाउचाउ ना थोड़ा मियामंग से चाउ ये थोरम सिंह की आम नहीं जी नहीं दां।
1: अदो नसी दी करी फिल्म की करम बिशे तासी के ओमिता।
2: ओमिता
1: फजक्रेद सही सकते मुक्ना तमें।

तहंजरी बैसे यसी थौरी फिल्म सिदगी सैसकपी पुष्परानी की खोंजल दा खाइदिम इमोना सैरिंगबा सॉरी सेंजमना सैरंगबा फिल्म सैनी

0: हेलो हेलो
1: Hello, ma'am. Tibu, koye.
0: गुड इवनिंग मणिपुर की थोरम ने मिंग ले फ्रॉम हाइबियो
1: हमें मैं लंबाल में लेकर जगी अहों थांबम इबम चा
0: इबम चा बु थोरम थोरम द तराम नोक छरी ngasi करम फिल्म की करी से ताबी गनी इबम चा
1: मैम अकोई की यो की थमोय ना अदुगी ता एक यंगोन सखबा हाज साइबन सेम बमपु ये बनवाय वलांगी मई जाएगा एकोई
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯏꯕꯣꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯣꯂꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯎꯕꯤꯔꯣ
1: ꯐꯝꯗꯅ ꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦꯗ ꯑꯍꯟ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯊꯪꯗꯩꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

चाइना फिल्म असिदगी सैसक पी पुष्परानी की खुंजलता वाई स्वर्णलता ने सैरिंग उकिन अमाक्षमना सैरंग इसई असी तहन जखिबग लुनना तांकक असी की उइना फिल्म सैसिंग लांथोक चबा लोइसरी।

मखल मथल की थौरम सिंह ना लेचल सिमजे दुना संदुक चरी बासी आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल देगिनी हौजे पुंगफम सिदा पुजरकली तोंगन तोंगन बा सेसक पसिंगी खोंजलदा गीत

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के लिए आपका जो प्यार है ये तो जग जाहिर है। 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी के गाए, आनंद बख्शी द्वारा लिखे और कल्याण जी आनंद जी के सुरबद्ध किए इस गीत को सुनकर आप समझ ही चुके होंगे कि प्यार भरे गीतों का हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया है जिसे कहते हैं हर सिंगार। और इसे लेकर आ गया हूं मैं अभिनीत शुक्ला, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और साथ ही सुनिए फिल्म कभी कभी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की सदाबहार आवाज में ये गीत, बोल साहिर लुधियानवी के और संगीतकार खयाम।

जहां तक मुमकिन है तुम्हारे साथ रहूंगा कि जहां तक मुमकिन है तुम्हारे साथ रहूंगा हो ना सका तुम्हारी सुबह का सूरज तो चांदे रात रहूंगा। अभी आपने आंचल फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में गीत सुना जिसकी शब्द रचना की कवि प्रदीप ने और संगीत था चितलकर रामचंद्र का। और अगला गाना फिल्म ख्वाब से हेमलता और यशुदास का गाया हुआ, गीतकार और संगीतकार दोनों ही हैं रविंद्र जैन।

देवानंद साहब की फिल्म गाइड से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में था ये गीत, जिसे लिखा शैलेंद्र ने और संगीत था एस डी बर्मन का। और इसी के साथ गाने सुनते सुनाते ही धीरे धीरे बीतने तो वाला है हर सिंगार का आज ये सफर भी। लेकिन फिलहाल आप मिस्टर एंड मिसेस 55 से मोहम्मद रफी और गीता दत्त का गाया ये गीत सुनिए, जो निकला मजरू सुल्तानपुरी की कलम से और संगीत इसमें ओपी नैयर का था।

बात एक रात की फिल्म से हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने गीत सुना। इसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और इसका संगीत भी दिया था हेमंत कुमार ने। और साथियों, इसी के साथ प्यार भरे नगमों की इस पेशकश को आज यहीं विराम देना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आगे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जल्दी ही वापस लाएंगे और आपसे मिलेंगे।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कवरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह

0: वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले तीन वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की तीन दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved two major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometre long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7 km long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a four-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a three-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with various administrations. The panel informed the Home Minister that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in a

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karikram mein hamisha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar haazir hain. Hamare saath charcha ke liye studio mein aamantrit hain आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक पुनीत जैन. पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद मनोज जी.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस राइज ओवर हाफ ए परसेंट. सेंसेक्स गेन्स नियरली 450 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबव 24,000. जीएसटी कलेक्शन सर्ज ऑलमोस्ट 14% टू ओवर 1,94,000 करोड़ रुपीज इन जून दिस ईयर. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई खरीदारी, प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक लाभ में रहे. सेंसेक्स लगभग 450 अंक उछला. निफ्टी 24,000 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद. देश में इस वर्ष जून में जीएसटी संग्रह लगभग 14% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत घटी.
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से, जहां आज खरीदारी तेज रही और पिछले दो सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साथ ही निफ्टी सभी प्रमुख सूचकांक लगभग 0.6% लाभ के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 444 अंक बढ़त के साथ 76,923 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 140 अंकों की बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप इंडेक्स 100 में 0.3% से अधिक की वृद्धि हुई और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स भी लगभग 0.4% लाभ के साथ बंद हुआ.
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.6% higher today, snapping a two-session losing streak. Sensex rose by 444 points to close at 76,923. Nifty also gained 140 points to settle at 24,006. In the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index added over 0.3% and the small-cap 100 index climbed around 0.4%. Earlier, markets opened marginally higher. Both the stock market indices extended their upward momentum throughout the session, supported by softer crude oil prices and buying across specific sectors.
1: सेंसेक्स पैक पर ध्यान दें तो 30 में से 21 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में अव्वल रही कंपनी एटर्नल, जिसके शेयरों में 5.7% की वृद्धि हुई. एशियन पेंट्स में 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 3% ऊपर उठकर बंद हुए. उधर बिकवाली के दबाव में एचसीएल टेक के शेयर लगभग 3.5% लुढ़क गए. उधर टेक महिंद्रा में लगभग 3.1% और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में 2.5% से अधिक का नुकसान देखा गया.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 15 आउट ऑफ द 25 सेक्टर्स एंडेड इन पॉजिटिव जोन अमंग द की गेनर्स. रियल्टी क्लाइम 3.6%, एफएमसीजी रोज 1.8% एंड सर्विसेज एडेड ओवर 1.3%. इन कॉन्ट्रास्ट फोकस्ड आईटी फेल 2.5%. IT lost 1.9% and metals slipped 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,276 companies advanced, 1,995 companies declined and 176 companies remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 57 पैसे कमजोर हुआ. 95 रुपए 24 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 101.37 पर चल रहा था. पुनीत जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. बाजार में आज थोड़ी सी तेजी देखी गई है, मूड थोड़ा सा बदल गया है. क्या टिप्पणी करना चाहेंगे बाजार पर?
2: मनोज जी देखिए भारतीय शेयर बाजार एक बहुत ही मैं कहूंगा एक डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहा है क्योंकि और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी तक इसकी बाजार की स्ट्रेंथ रहे हैं जैसे आईटी क्षेत्र के जो शेयर्स थे वो अभी तक इस बाजार की हम कहेंगे कि एक नींव रहे थे लेकिन वहां पर हम काफी गिरावट देख रहे हैं काफी आज के दिन भी जबकि बाजारों में अच्छी तेजी थी हमने आईटी के शेयर्स में काफी गिरावट देखी और वहां पर काफी निवेश है रिटेल इन्वेस्टर्स का भी इंस्टीट्यूशंस का भी और आईटी क्षेत्र भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। दूसरे तरफ देखें तो जो कंज्यूमर कंपनीज एफएमसीजी कंपनीज में हम पिछले काफी दिनों से गिरावट देखते आ रहे थे और यूजुअली हम एफएमसीजी कंपनीज को इकोनॉमी का एक दर्पण मानते हैं हम मानते हैं कि अगर एफएमसीजी कंजम्पशन कम है तो उसका असर नेगेटिव असर सिर्फ शेयर बाजार पर ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है वहां पर हमने आज तेजी देखी जो एक पॉजिटिव साइन है यानी वो पॉइंट कर रहा है कि आने वाले समय में शायद कंजम्पशन यहां बेहतर हो जो हम नेगेटिव इफेक्ट देख रहे थे मिडल ईस्ट वॉर के शायद वो इफेक्ट अब कम होंगे कुछ हमने कमी देखी है कुछ इसेंशियल कमोडिटीज में कमी आई है वहां पर थोड़ी गिरावट आई है तो कंजम्पशन बढ़ सकती है तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं आपके बाजार जो है एक मिले जुले दौर से गुजर रहा है ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो आ रहे हैं वो उम्मीद से थोड़े बेहतर है हमने देखा जो इवन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आया कोर सेक्टर ग्रोथ का डेटा आया वो उम्मीद से बेहतर था क्योंकि पिछले महीना अगर आप देखें जून का काफी मुश्किल महीना था क्योंकि वॉर का इम्पैक्ट बहुत था सप्लाई चेन्स काफी डिसरप्टेड थी तो कुल मिलाकर एक मिला जुला रुख है पर मुझे लगता है कि आने वाले समय ये एक पॉइंटर है कि आने वाले समय में जैसे थोड़ी और इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होंगी तो बाजार और बेहतर हो सकता है।
0: पुनीत एफएमसीजी इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट रोज 1.8% टुडे अ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन सीजनल डिमांड वेयर द हाइट ऑफ द समर सीजन देयर इज ऑल्सो प्रोजेक्शन ऑफ ड्राउट बिकॉज 43% less rainfall has been predicted by IMD. How do you see all of that playing into, you know, your food and beverage consumption and really the pricing of FMCG stocks? Because they seem to adjust quite well.
2: So Arjun, interestingly, FMCG sector, like I said, is a very important sector of the economy because it not only concerns large companies, it concerns consumption by people at large and it gives us some kind of an idea what is a trend in the economy. Now, FMCG sector is going through some kind of a turmoil because what we saw was some pullback in consumption lately. At the same time, we saw prices going up because the input prices, the raw material prices, which are commodities, they really shot up in the last 2-3 months. Fortunately, today we saw that there was a pullback in most commodity prices. You would see that even commodity stocks, a lot of them pulled back today. So probably the market is reading that going forward, prices in commodities and therefore the input prices for FMCG companies will come down and the profitability will rise. Yes, there are concerns about consumption because of lack of rainfalls and the expectations of a shortfall in monsoon rains this year. That is there. I don't think we can wish that away. That is, we're going to deal with it. Government is trying to bring in measures which will improve the situation. But I think that challenge being there, we will see margins improve because of fall in prices for inputs.
1: Puneet ji, aapne charcha ki IT sector ki aur kaha ki wahan par sthiti उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी यहां पर क्या समझा जाए कि हमारी आईटी सेक्टर जो अंतरराष्ट्रीय जगत में परिवर्तन चल रहा है वहां खरा उतरने में पीछे रह रही है या ढांचागत समस्या आ रही है हमारी आईटी सेक्टर में सेवाओं को लेकर या कहने जो नए प्रोडक्ट उनके हैं उनको लेकर
2: जी देखिए सच बात तो यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ हद तक ये हमारे कंट्रोल से बाहर है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हो रहा है उससे जो काम करने का तरीका बदल रहा है पर्टिकुलरली फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज वो एक बहुत बड़ा बदलाव है इस सेक्टर के लिए। आज ही एक बहुत प्रमुख आईटी सर्विसेज कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस दी थी टॉप लाइन ग्रोथ की उसको काफी मेजरली कट किया उसका नेगेटिव असर सारी इंडस्ट्री पर आया। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर्स अपने पिछले 10 साल के सबसे नीचे स्तर पर चल रहे हैं जबकि अच्छी कंपनीज हैं काफी प्रॉफिट्स हैं वहां पर और बहुत बड़े पैमाने पर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। तो डेफिनेटली इंडियन आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दो या तीन वर्ष ये काफी डिफिकल्ट रहेंगे इस सेक्टर के लिए. उसके बाद जो नए आयाम होंगे, नए डायमेंशंस होंगे, किस प्रकार से ये देखिए डिजिटल दुनिया तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, तो इंडियन कंपनीज भी अडैप्ट करेंगी, पर शायद अभी मार्केट्स को मैं कहूंगा डाउट है कि कौन सी कंपनी सर्वाइव करेंगी, कौन सी कंपनीज ग्रो करेंगी, ये भी क्लियर नहीं है. तो इस पूरे माहौल में अनसर्टेनिटी का माहौल है, उसमें जो आईटी से क्षेत्र के जो शेयर्स हैं उसमें हम कुछ गिरावट दिख रहे हैं.
0: पुनीत, लॉट ऑफ आवर आईटी कंपनीज डिपेंड अपॉन आउटसोर्सिंग, ऑफशोर आउटसोर्सिंग फ्रॉम यूएस कंपनीज हु आर नाउ डिपेंडेंट अपॉन artificial intelligence, income from that particular service and capital expenditure on artificial intelligence, data centers being created as a result of it. And we've seen from the earnings results of bellwether IT companies in India that a lot of their AI income has gone up. So how do you see IT companies adjusting to this? Because it's not necessarily, it's high skill, but it's a lot of jobless growth as well. Is that really what is hitting the IT sector now?
2: So jobs vis-a-vis the growth of AI in workplaces, of course, is a major concern. We still do not know, but it's as it unravels, there are definitely huge concerns about employability of people, particularly countries like India, where we have large white-collar workers. There could be a significant impact on employment. This is just the beginning. We don't know what is going to happen. I think it will take a couple of years to play out. But IT companies, of course, are at the receiving end of this entire turmoil.
0: Your short opinion on metals, because it's been known to be volatile in the past as well. So we saw it slip by 0.9% today. Now we can see producers, in fact, looking for a substitute for copper. Aluminium being one of them, because a lot of EV production is using copper. They want to substitute it for aluminium. Do you see these kind of policy changes actually impacting metal stocks now?
2: Definitely. I think, in fact, in the last 2-3 months, commodity prices, particularly metal prices, have really shot up, even steel prices and other non-ferrous metals. So I think the industry is trying to bring down those prices because inflation is really hurting them. But my guess is this will take a couple of years. It's not going to happen overnight. I think this is a slow process. It will take some time.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक शेयर बाजार की ओर. सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां प्रमुख बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला है. खरीदारी के समर्थन से ताइवान के ताइएक्स सूचकांक में 1.9% से अधिक की वृद्धि हुई. वहीं जापान का निक्की 225.06% लाभ के साथ बंद हुआ. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.4% से अधिक की बढ़त हुई. इसके विपरीत बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2% की भारी गिरावट हुई. उधर सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% नीचे आ गया. अवकाश के कारण हांगकांग के शेयर बाजार में कामकाज बंद रहा. यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख प्रमुख बाजारों में दिख रहा था. एक ओर बिकवाली के चलते फ्रांस का कैक 40 0.8% और लंदन का फुटसी 100 0.5% नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि जर्मनी के डेक्स में 0.1% से अधिक की बढ़त देखने को मिल रही थी. अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो यूरोजोन में जून महीने में इस वर्ष वार्षिक आधार पर 2.8% कमी मुद्रा स्फीति में देखने को मिली है, जबकि मई में मुद्रा स्फीति की दर 3.2% दर्ज हुई थी. यूरोपीय संघ के सांख्यिकी कार्यालय यूरोस्टेट की ओर से जारी ताजा आकलन में वार्षिक आधार पर जून में ऊर्जा पदार्थों के मूल्यों में 8.7% की वृद्धि रहने की सूचना दी गई है, जबकि मई में इन पदार्थों के मूल्यों में 10.8% की वृद्धि हुई थी.
0: To what extent do you see the lifting of sanctions against Russia impacting European energy prices and inflation as well, which has come down marginally from 3.2% in May to 2.8% for the month of June. And we have seen that energy prices are also seeing a change right now. How do you see this impacting European policy and what's been happening in the Middle East?
2: So this is really significant for Europe, because as you know that Europe imports most of its energy from Russia, or used to import from Russia, and after the US-Russian-Ukrainian war, that got disrupted and prices of energy in Europe went up, shot up really significantly. Hopefully now things will start coming down a little bit. Also because the Gulf war is ebbing and the supplies of fuel from Gulf is going up. So my guess is that energy prices across the world, they already come down. We know that crude prices are already down. Energy prices across the board should trend down, and I think that will be helpful, particularly to Europe, because Europe has been facing very difficult times vis-a-vis energy prices.
0: Let's move on to the US market now. Wall Street ended on a positive note yesterday, driven by gains in chip stocks among the major indices. The Nasdaq Composite surged 1.5%, followed by S&P 500, which advanced 0.8%. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average gained nearly 0.3% to close at a record high of 52,319. The U.S. markets wrapped up the first half of the calendar year on a strong note. Nasdaq outperformed with a gain of nearly 13%. The S&P climbed 9.6% and the Dow advanced 8.9%. Clearly, technology stocks, which is actually trading on Nasdaq as opposed to S&P and the Dow Jones Industrial Average, it went up by 13%. What is the U.S. economy telling you? But despite all the negativity surrounding the international policy of President Trump, the economy is now expected to rise. So what's next for the U.S. economy right now? Because if you look at even their the dollar valuation, it is at 101 right now. Petrodollars, the lifting of sanctions has led to the another demand for dollars to pay for energy import. So how do you see the U.S. economy right now?
2: So Arjun, surprisingly, despite all apprehensions about U.S. economy, the U.S. economy seems to be doing very well. The economy is already expanded to $40 trillion, which is huge. And on top of it, we have a strong dollar there. Despite the fact that interest rates went up, we did not see a decline in GDP growth and no signs of recession there. So clearly, conventional economics has been thrown out of the window in U.S. for the time being. When you look at technology sector like Nasdaq, you will find that it is just a segment of the technology sector which is really doing well in America. Software services companies in U.S. also, if you look at the large ones like Accenture and others, Capgemini, etc., they're also doing badly. In fact, the valuations have gone down even further. So clearly, there also we find some kind of segmentation in the way IT

0: business is growing, but headline numbers are very good in US.
1: आपने बड़ी रोचक बात कही कि पारंपरिक अर्थशास्त्र के नियम धता बताते अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिलहाल दिख रही है अमेरिकी शेयर बाजार में धमाल यानी अमेरिका अमीर हुआ समृद्धि के शिखर पर पहुंचा तो उसकी प्रभाव से दुनिया भर में थोड़ी सी ऊपर आने की दिशा देखी जाती थी अभी का समृद्ध होता अमेरिका क्या दर्शा रहा अलग थलग अमेरिका टापू या दुनिया भर में समृद्धि बढ़ने के आसार
0: तो मनोज जी आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है और ये सब लोग इस बात को लेकर हैरान परेशान है मैं कहूंगा कि जो अमेरिकन पहले ये होता था अमेरिका में यदि शेयर बढ़ते थे पैसा बनता था प्रोस्पेरिटी आती थी तो पूरे विश्व में छोटी बड़ी सभी अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होता था अब हम देख रहे हैं कि उसका सिलेक्टिव फायदा हो रहा है कुछ एरियाज हैं अगर हम एशिया में देखें तो भारतीय बाजारों में गिरावट रही एफआईआई की सेलिंग थी और वहीं पे कोरिया जापान ताइवान वहां पर बहुत बड़े पैमाने पे हमने तेजियां देखी और वहां पर शेयर मार्केट भी ऊपर गई तो क्लियरली ये जो इम्पैक्ट है अमेरिकन अर्थव्यवस्था का वो सिमिलर एक बराबर नहीं है सबके लिए और शायद इसका कारण यह है कि जो एक स्क्यूड पॉलिसीज है अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है पॉलिटिकल पॉलिसीज जो है मुझे लगता है उसका असर है ये कि ये पूरे जो अर्थशास्त्र के नियम है रीराइट किए जा रहे हैं
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं लौटते हैं स्वदेश वस्तु और सेवा कर लागू हुए 9 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं यानी 9 वर्षों से जो एक नई प्रथा शुरू हुई वह किस दिशा में हमें लिए जा रही है उसके आंकड़े गवाह हैं और जून के आंकड़े इस वर्ष के कह रहे हैं कि जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में ये कहा गया कि जून में घरेलू जीएसटी संग्रह 1,34,774 करोड़ रुपए रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक है इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि आयात पर जीएसटी संग्रह 34.6% बढ़ा 60,038 करोड़ रुपए पर पहुंच गया कुल मिलाकर जीएसटी की दिशा और देश की आर्थिक दशा किस रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं समझना चाहेंगे और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं
0: देखिए यहां भी मैं कहूंगा कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं क्योंकि ऐसा लगता था कि जून का महीना काफी डिफिकल्ट महीना है महंगाई की दर बढ़ रही थी कंजम्पशन कम होने की आशंका थी बारिश नहीं हो रही थी ये सब चिंताओं के बीच में हमको जब जीएसटी जो फर्स्ट इंडिकेशन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो अच्छा आता है वो ऐसा दर्शाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही होगी तो ये काफी एक अनएक्सपेक्टेड नंबर्स हैं हालांकि इसमें काफी बड़ा योगदान इंपोर्ट के नंबर्स का है अगर आप देखें जो हमने यानी ज्यादा आयात हम कर रहे हैं इंपोर्ट्स कर रहे हैं इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी मुद्रा पे जो रुपी पे है उस पर प्रेशर हो रहा है उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है कुछ हद तक हम इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि वो इस दौरान भी उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको स्टेबल रखा है स्ट्रांग रखा है और कंजम्पशन जो है क्योंकि जीएसटी नंबर सीधे कंजम्पशन से रिलेटेड है तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन भारत में अभी भी अच्छी चल रही है ये एक सरप्राइजिंग ट्रेंड है बट दैट इज ट्रू
2: द नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट इन 2025 वी सॉ अ स्पाइक इन ऑटो सेल्स व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन 2026
0: सो आई थिंक दोज रिफॉर्म्स आर प्लेइंग आउट स्टिल सो वी हैव सीन अ रीबाउंड इन ऑटो सेल्स लाइक यू मेंशन व्हिच वाज राइट गुड्स नाउ वी आर सीइंग सम स्टेबिलिटी इन एफएमसीजी एंड कंजम्पशन आइटम्स सो माय गेस इज दैट सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी शुड रियली हेल्प नॉट ओनली कंज्यूमर्स It should help producers also. The companies which pay GST to government, they're also looking for ease of doing business. My guess is that government will try and simplify this further. In fact, the policy making decision they will kind of roll out over the next 6 months. We probably will see a better year in 2027.
2: In more good news, the Unified Payments Interface UPI transaction volumes rose 23% to over 22 billion. In June, on a year-on-year basis, while UPI transaction value surged 20% to over 28 lakh crore last month, according to data released today by the National Payments Corporation of India, on an average basis, UPI processed around 757 million transactions daily in June. So it seems the June news has really, I'm sure it'll give economists something to think about. But when we talk about electronic transactions, payments being made in this way, What is the role of cash going to be in the future?
0: So, while we, of course, ideally cash transactions should have gone down, surprisingly, we haven't seen a much decline in cash transactions. In fact, cash in circulation in India has gone up lately. But probably that is a sign of the economy expanding to pockets of rural India and other places. Overall, UPI definitely has helped us, but I think cash still continues to be the king.
2: So, Digital India program depends a great deal on the internet.
0: Absolutely. And I think we've done very well in that area.
1: अच्छी खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे और आगे बढ़ते हैं ग्रामीण भारत की ओर. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से लागू हो रहा है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है. श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का माध्यम है.
2: The central government has notified revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ramji Act of 2025 effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. It said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. More from our correspondent.
3: The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act to 327.4 rupees per day under VBG Ramji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. The states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh are among those witnessing significant hikes ranging between 15 and 25%. The Ministry highlighted that Arunachal Pradesh and Nagaland have received the highest percentage increase of nearly 24.5%. States with already higher wages have also seen upward revisions. Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. With Saklain Akhtar, this is Vishnu Piers for Akashwani News, Delhi.
2: Indian Ambassador to the United States, Vinay Mohan Quatra, has said India is emerging as a global leader of trusted supply chains. Addressing the 9th U.S.-India Strategic Partnership Forum's annual leadership summit in Washington, D.C., Mr. Quatra said this transformation is underscored by resilient economic growth and structural reforms. The Indian Ambassador attributed this transformation to India's domestic economic growth and structural reforms supported by robust and mutually beneficial partnerships abroad. The ambassador also outlined New Delhi's ambitious macroeconomic roadmap, projecting a structured path for India to grow into a 25 to 30 trillion US dollar economy by 2047.
4: In India, under the leadership of Prime Minister Modi since 2014, has been a series of economically transformative measures on the ground, which have resulted in a consistently high growth of 7+%, which is uniquely driven by domestic demand. It has externalities, but not really that strong.
2: Oil marketing companies have reduced the price of a 19-kilogram commercial LPG cylinder by 183.5 rupees today. According to the Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders have come into effect from today. After the reduction, new rate for 19-kilogram commercial LPG cylinder price in Delhi has been slashed to 2,930 rupees. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business. Let's now move on to the energy market, crude oil. Global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 0.9% down at $72.30 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% down at $69.03 per barrel when reports last came in very briefly. Despite the traffic that we're seeing through the Strait of Hormuz, there is also news trickling in of fresh attacks. Is any of this true?
0: So there may be some random attacks happening in Hormuz, but I guess the supply of oil from the Gulf has started in right earnest. In fact, I read the news that Saudi Aramco has already started selling oil on crude on a spot basis, and about 6 million barrels thereby selling. So my guess is that supply chains have been restored rather quickly in the Gulf.
2: Let's move on to the bullion market now. In the Indian Bullion market 24 karat gold was trading 0.5% up at 1,43,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.1% down at 2,28,550 rupees per kilogram a short while ago.
1: आइए आपको लिए चले हैं MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में समाचार तैयार की जाने तक अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 0.5% बढ़कर 1,43,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था जबकि जुलाई अनुबंध वाली चांदी थोड़ी सी कमजोर होकर 2,28,421 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी यहां पर पुनीत जी सोने और चांदी के भाव अब यहां से कहां जाते दिख रहे हैं क्योंकि एक और कई देशों में जो केंद्रीय बैंक है उनकी ओर से खरीदारी भी चल रही है सोने के भाव नीचे भी आ रहे हैं तो आगे का रुख क्या लग रहा है
0: मनोज जी देखिए अभी फिलहाल जो प्रेशियस मेटल्स हैं इनका डायरेक्ट इंपैक्ट डॉलर इंडेक्स से आ रहा है और जैसे आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है लगातार 101 पहुंच गया है तो हमने सोने और चांदी में कमी देखी है मेरा मुझे ऐसा लगता है कि भी आने वाले कुछ समय तक थोड़ा कमजोरी रहेगी प्रेशियस मेटल्स में और शायद फिर कंसोलिडेशन होकर अगले 2 या 3 महीनों बाद शायद हम थोड़ी स्टेबिलिटी देखें मुझे मेरा पर्सनल व्यू है कि यहां से थोड़ी कमजोरी अभी और हम देख सकते हैं इन इन प्रेशियस मेटल्स
2: एंड व्हाट्स द लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस इज दैट प्लेइंग a role in the stability in prices?
0: Definitely. That is also one of the reasons why commodity prices across the world, if you see, they have fallen and therefore gold and silver are also under pressure.
1: बस यहीं पर पुनीत जी श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
0: धन्यवाद मनोज जी.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

गाना अगर गाना है तो पहले उसे सुनना भी पड़ेगा और इसीलिए एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन सकते हैं आपके दिल के हर एक भाव से मेल खाते गीत यहां इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीत मेरे मनमीत। मैं अभिनीत आपका पुनः स्वागत करता हूं। पहला गाना था फिल्म संगम से लता मंगेशकर महेंद्र कपूर और मुकेश की आवाज में, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत शंकर जयकिशन का जिन्होंने हमारे अगले गीत को भी सुरों से सजाया है जो कि है फिल्म गबन से रफी साहब का गाया हुआ, शब्द रचना हसरत जयपुरी की।

लता मंगेशकर का गाया ये बेहद खूबसूरत गीत था फिल्म वो कौन थी से, जिसे लिखा राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत मदन मोहन का। वैसे हमारी मुलाकात तो अगले हफ्ते मंगलवार को हो ही जाएगी और 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम गोल्ड चैनल में हमेशा ही आपका हमारे किसी ना किसी साथी से मिलना हो ही जाएगा। फिलहाल गीत मेरे मनमीत को अभी हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि आज का सफर यहीं समाप्त होता है। अवनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा, आगे आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही काफी है। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं कार्यक्रम निशिगंधा. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. और शुरुआत कर रही हूं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, लेकिन हमेशा की तरह कुछ अल्फाज लिए. ना आसमां की तमन्ना न तारों की चाहत, ना आसमां की तमन्ना न तारों की चाहत, बस इस वादी में मिले उम्र भर मुझे तेरी सोहबत.

नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, खता तो उस चेहरे की है जो हमें सोने नहीं देता।

एक तुम हो एक मैं हूँ, एक तुम हो एक मैं हूँ और मोहब्बत हो दरमियाँ। इस जहां में फिर किसी और की भला गुंजाइश हो कहाँ।

अब नजरों को नजारों की तमन्ना ही कहां है, अब नजरों को नजारों की तमन्ना ही कहां है, जब सामने तुम हो तो फिर देखना ही क्या है।

तुमने तोड़े हैं मेरे दिल के टुकड़े इस तरह, तुमने तोड़े हैं मेरे दिल के टुकड़े इस तरह, देख लो कि अब हर टुकड़ा मुस्कुराकर तुम्हारा ही नाम लेता है।

रेशमी जुल्फों का पहरा था उन नशीली आंखों पर, हम होश में रहते भी कैसे जब दिल ही हार बैठे हम उस मंजर पर।

0: रोज नया बहाना बनाकर तुम जो हमसे मिलने आते हो, रोज नया बहाना बनाकर तुम जो हमसे मिलने आते हो, मोहब्बत नहीं है तो फिर ये दिल लगी किस लिए जताते हो।
1: यूं ही तुम

मेरी हर सुबह और हर शाम तुम्हारे ही दम से है, मेरी हर सुबह हर शाम तुम्हारे ही दम से है, तुम हो तो ये कायनात है, वरना तुम्हारे सिवा इस दुनिया में क्या रखा है।

दोस्तों ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 1:10 पर। गीत सुहाने लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में हरियाणा के एक आरोपी को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी ने खुद को सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बताकर एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाया और उनसे 25 लाख रुपए से अधिक

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू और कार्यक्रम है गीत सुहाने. आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार. नदी का किनारा हो और तुम सामने बैठे देखो नजारे, उस बहते पानी में भी सिर्फ अक्स दिखेंगे तुम्हारे.

लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी का सबब, लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी का सबब, अब कैसे कहें कि तेरी चाहत में खुद को ही भुला बैठे हैं हम।

नींद से कह दिया है कि अब वो हमारे पास ना आए, नींद से कह दिया है कि अब वो हमारे पास ना आए, हम हर रात जागते हैं शायद कि तुम अब आ जाओ।

हमारे जो साथी अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. कार्यक्रम है गीत सुहाने. मैं हूं आपके साथ अंजू.

दुनिया की हर मुश्किल से तुम्हें छुपा कर रखेंगे। एक बार भरोसा तो करो और आ जाओ हमारी मोहब्बत की पनाह में।

इस कदर गहरे उतरे हो तुम मेरी रूह में, इस कदर गहरे उतरे हो तुम मेरी रूह में कि अब हर धड़कन में तेरे ही प्यार की लौ सुलगती है।

तुम पास नहीं हो तो ये धड़कनें रूठी सी लगती हैं तुम पास नहीं हो तो ये धड़कनें रूठी सी लगती हैं आ जाओ पास मेरे ये दिल बहुत बेकरार रहता है

तेरी सादगी का ये अंदाज हमें बहुत भाता है, तेरी सादगी का ये अंदाज हमें बहुत भाता है कि जो बिना कुछ कहे भी दिल की हर बात समझ जाता है।

दिल की धड़कनों ने ये गवाही दी है मुझे अक्सर, दिल की धड़कनों ने ये गवाही दी है मुझे अक्सर कि सदियों तक याद रखी जाएगी ऐसी हमारी मोहब्बत की कहानी बनेगी।

दोस्तों, ये सफर अब यहीं पर खत्म होगा क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 2:10 पर रात सुर में ही लेकर एक बार फिर से आपके साथ रहेंगे. सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जीराम जी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने हेलीकॉप्टर परिचालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश के पहले निजी पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को आंध्र प्रदेश के उंडावली हेलीपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि ये उपग्रह आधारित आधुनिक तकनीक खराब मौसम और दूर दराज क्षेत्रों में भी हेलीकॉप्टरों की सुरक्षित और सटीक लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि ये पहल हेलीकॉप्टर सेवाओं को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और हर मौसम में सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से आपदा राहत, एयर एम्बुलेंस, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क सेवाओं को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में हरियाणा के एक आरोपी को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी ने खुद को सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बताकर एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाया और उनसे 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 3 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ आपके साथ अंजू और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

देखो चांद ने आज खिड़की से मुस्कुराकर कहा कि खुशकिस्मत हो तुम जो तुम्हें ऐसा हम सफर मिला।

किताबे इश्क के पहले पन्ने पर लिखा पहला नाम हो तुम। किताबे इश्क के पहले पन्ने पर लिखा पहला नाम हो तुम, मेरा पहला, मेरा आखिरी और सबसे मुकम्मल अरमान हो तुम।

तुमसे मिलकर जाना कि मोहब्बत एक महज लफ्ज नहीं है, तुमसे मिलकर जाना कि मोहब्बत महज एक लफ्ज नहीं है, तुम मेरी जिंदगी का पहला सुकून और पहली मोहब्बत हो।

तो अब चलूं मैं, मगर अपना दिल यहीं छोड़ जाते हूँ। तुम्हारी यादों के साये में अपनी हर सांस यहीं छोड़ जाते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायुची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थीं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायुची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल फोर्थ 250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 3 और नागरिकों के कथित जबरन लापता किए जाने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पंजगुर और खुजदार जिलों से इन लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच जारी है। इस मुकाबले में सेनेगल ने बेल्जियम पर 2-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 3:10 हो चुके हैं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ

लता मंगेशकर जी की आवाज में जब जब तुम्हें भुलाया। रातों में खूब बातें होती हैं खुद से, रातों में खूब बातें होती हैं खुद से, कौन कहता है कि मैं अकेला हूं। 3:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

जलाकर हसरत की राह पर चिराग आरजू के जलाकर हसरत की राह पर चिराग आरजू के हम तन्हा रातों में तेरे मिलने का इंतजार करते हैं। 3:25 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

खुद से बातें कर रातों को दिल बहला लेता हूं खुद से बातें कर रातों को दिल बहला लेता हूं कभी सही होता हूं कभी खुद को ही गलत ठहरा लेता हूं 3:32 हो चुके हैं आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ

आ जाते हैं वो भी हर रोज ख्वाबों ख्यालों में आ जाते हैं वो भी हर रोज ख्वाबों ख्यालों में जो कहते हैं कि हम तो अब कहीं आते जाते ही नहीं।

बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार। मुनाफा कम है, मुनाफा कम है, पर गुजारा हो ही जाता है। 3:46 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

अकेली रात बोलती तो बहुत है अकेली रात बोलती तो बहुत है लेकिन सुन सिर्फ वही सकता है जो खुद भी उसके साथ अकेला हो

3:59 हो चुके हैं अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थीं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की यह टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल 4250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अब से कुछ ही देर में पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 में दोनों टीमों का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से सुबह 5:30 बजे कैलिफोर्निया में होगा। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मेक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, माहे, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शनिवार तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has approved two major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometre long, six-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Ganj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre long Kanpur-Kabrai section of National Highway

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 4:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

जिंदगी सवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी सवारने को तो जिंदगी पड़ी है, पहले वो लम्हा सवार लो जहां पर ये जिंदगी खड़ी है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है

तारीफ करूं क्या उसकी। किसी की सलाह से रास्ते तो जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते तो जरूर मिलते हैं, पर मंजिलें तो खुद की मेहनत से ही मिलती हैं। 4:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

मंजिल पर पहुंचने के बाद ही पता चला मंजिल पर पहुंचने के बाद ही पता चला कि मंजिल से ज्यादा अच्छा तो सफर ही था।

हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है लेकिन हमारा संदेह समस्याओं का नया पहाड़ खड़ा कर सकता है। इन लाइनों में पूरी तरह से सच्चाई छिपी हुई है क्योंकि जब हम किसी काम की शुरुआत विश्वास के साथ करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हमें आसान लगने लगता है, पर जब हम किसी काम की शुरुआत से पहले ही संदेह करने लगते हैं तो छोटे से छोटा काम भी किसी पहाड़ की तरह बड़ा दिखने लगता है। 4:28 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

जीवन में अगर सुख और शांति चाहते हैं तो दूसरों से हमेशा शिकायतें करने से बेहतर है कि हम खुद को ही बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से लाख गुना बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना। 4:34 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को याद अक्सर वही आते हैं जो उड़ जाते हैं।

बेहिसाब हसरतें ना पालिए, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है सबसे पहले उसे संभालिए। 4:49 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

चार बजकर पचपन मिनट हो चुके हैं अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल 250 न्यूयॉर्क और सेल बॉस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,295 हो गई है। 11,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि लगभग 13,000 लोग बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस त्रासदी पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 25 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भूकंप आए थे, जिससे राजधानी काराकास सहित कई इलाकों में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा था। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanae Takaichi, in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both the sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said the visit marked an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. In a social media post, Mr. Modi said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi that will further deepen India-Japan special strategic and global partnership. The Prime Minister said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The government has approved two major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometre long 6

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 5:11 हो चुके हैं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है समय मत लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है वरना फिर समय ही तय करेगा कि अब आपको क्या करना है 5:11 हो चुके हैं कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं ही हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। जीवन है तो कुछ समस्याएं तो होंगी ही, जीवन है तो कुछ समस्याएं भी होंगी। अगर हम सारा समय सिर्फ समस्याओं के बारे में ही सोचेंगे तो फिर समस्या तो वहां की वहीं रहेगी। हमें समस्याओं के बारे में सोचना छोड़कर कुछ समाधान के विषय में सोचना चाहिए।

जीवन में किसी को ढूंढना है तो सिर्फ परवाह करने वालों को ढूंढ लीजिए। जीवन में किसी को ढूंढना है तो सिर्फ परवाह करने वालों को ढूंढ लीजिए। इस्तेमाल करने वाले आपको खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। 5:24 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।